हे सुन वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

0: दिस इज उजाला रेडियो।
1: लगी मस्त नजर की कतार, हा हा हा, मस्त नजर की कतार, दिल के उतर गई।

गया हम भी गए जग में गरज महार हम मस्त नजर की कतार दिल के उतर गई पास इन प्यार की राहों में वो इन प्यार की राहों में दिल भी गया हम भी गए जग में गरज महार हम मस्त नजर की कतार हाँ।

0: रुक छोरी रुक,
1: सर पे न झुक, अच्छी नहीं ये बहाने।
0: रुक छोरी रुक,
1: सर पे न झुक, अच्छी नहीं ये बहाने।
0: अरे तक जरा तक,
1: जल्दी से बक, कहता है क्या वो दीवाने।
0: छोरी छोरी छोरिया,
1: जा छोड़ जा जा जा छोड़ जा जा जा छोड़ जा।

0: होश हुए गुम, देखा जो मुखड़ा तुम्हारा।
1: होश करो तुम,
0: होश हुए गुम, देखा जो मुखड़ा तुम्हारा। आशिकों की सुन,
1: छोड़ मेरी धुन, ऐसे ही कर ले
0: गुजारा। चोरी आ आ आ चोरी आ आ
1: जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने।

हमारे प्यारे सुनने वालों, आप लोग को जाना रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं, चाहे जहां पर आप लोग प्रोग्राम को सुनते होंगे वहां तक हम आप सभी को बहुत ही प्यार से दुलार से दिलो जान से स्वागत कर रहा हूं। मैं हूं सुभाष और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है आप सभी को कहते हैं वेलकम।

अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं उजाला रेडियो के बारे में, जो भी जानकारी आपको हासिल करना है, तो आप जाइए हमारा वेबसाइट है www.ujala.nl पर, या तो info@ujala.nl पर हर एक जानकारी आपको मिल सकेगा। चलिए गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं, अरमान मालिक जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे।

वेल वेल यार, दिल दिल में हो तुम, आंखों में भी तुम, कितना बिसाल, कितना रोमांटिक सॉन्ग जो प्रोग्राम में आप लोग सुने अरमान मालिक जी के आवाज में हमारे प्यारे सुनने वालों।

बात कितना मोई कितना बिसाल गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे हमारे प्यारे सुनवालों एन चलिए की बार आतिफ असलम जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे फिल्म का नाम जहर स्टेशन है उजाला रेडियो मैं हूं सुभाष

बिसाओ गाना वो बातें, वो लम्हे बातें, वो यादें। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे हमारे प्यारे शिनलो खांशिर के आतिफ असलम की आवाज में।

कितना मुंह कितना विशाल। बोले इसकी जब कभी याद आई तो चले आना यार, एंड कभी तुझे दिल से ना भुलाना। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने हैं। और हमारे प्यारे सुनो लो, अरिजीत सिंह एंड श्रेया जी के आवाज में गाना जो आप लोग सुनेंगे।

तू चले यार और अरिजीत सिंह एंड श्रिया जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने हैं और आप लोग उजाला रेडियो का प्रोग्राम सुन रहे हैं।

वेल वेल वेल यार, दिल दिल दिल मेरा क्यों ये शोर करे। अब इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, खास करके के आवाज

वेल यार, कोई तो मेरा दोस्त है, उस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। आशा है कि ये गीत भी आप सभी सुनने वालों को पसंद आए हुए होंगे। चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं, गाने वाले होंगे प्रीतम और जावेद अली।

तेरे बिन जीना नहीं, तेरे बिन मरना नहीं यार। आई सर से सोनू निगम एंड श्रेया जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे हमारे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो।

और एक तो कम जिंदगानी और ऊपर से और कम है जवानी, नेहा कक्कर उन्हीं की आवाज में और साथियों से आप सुने उजाला.nl इन्फॉर्मेशन के लिए।

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: उजाला रेडियो पर सुनिए यादगार गीत।
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

चला ब्रासा मिला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स ब्रासा फेस्ट जाटरडे 29 एंड संडे 30 अगस्त इन जिया इवेंट सेंटर हे यू

U Delas Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, Music, Dance, Shop, Market, Culture, Family Entertainment, Taste, Bollywood Vibes en Beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Laatste kans, Brasafest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl. अगर आपके घर पे जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

0: ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

0: you are.
1: Brazafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus... Indoor Summer Edition GIA Event Center... पूरा परिवार के लिए पूरा परिवार के साथ आइए और मनोरंजन प्राप्त किए फॉर अ गेजेलिगे डग गेजेलिगे मिडग गेजेलिगे आवंद गेजेलिग फेस्ट मेट द हेले फमिली और वी सुजल उमराव के साथ मेट सूर्य.

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Voormaar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

सुन वालों, ये उजाला रेडियो है और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम नहमा सुनाने को जा रहे हैं आंस्टांडे ज़ादा दिन एंड ज़ोंडा 30 अगस्त को जबरदस्त हंगामेदार फेस्टिवल होने वाला है ब्राज़ा फेस्ट इंडोर समर एडिशन इंडोर हाथ तू मोइस सुन रहे हैं भीतर जिया इवेंट सेंटर दिनाक में आप सुनने को जा रहे हैं नहमा इस बार प्रोग्राम में ला रहे हैं अफीशा की आवाज़ में ओक अवेजक और ब्राज़ा फेस्ट।

उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला बिंदना उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तुझ

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से सभी लरकन सुखाई बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सोमवार को 70 साल की आयु में ज़ैफ अंतखियार औत, लरकन सुषमा, राकेश, माया, हेलन और सीमा के माँ, चार दामाद सुरेन, दिनो, फेदो और जमाल के सास, सभी लड़कन के नानी, अम्स्टरडम की रहने वाली विधवा सत्वती अनूप की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। बैती के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे, और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत प्रसाद सुखाई के विधवा थी। अम्स्टरडम से सभी लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सोमवार को 70 साल के आयु में ज़ैफ अंतखियार औत, लड़कन सुषमा, राकेश, माया, हेलन और सीमा के माँ, चार दामाद सुरेन, दिनो, फेदो और जमाल के सास, सभी लड़कन के नानी, अम्स्टरडम की रहने वाली विधवा सत्वती अनूप की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। बेटी के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे, और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत प्रसाद सुखाई की विधवा थी। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले शनिचर के दिन में 4 बजे से 5 बजे तक, ज़ातरदख आंस्टांद फन 4 tot 5 uur, वेस्खाड क्रिमाटोरियम, ओक मेरवेग 275, अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले सोमवार दिन में 4 बजे से मांद खानस्तांद 4 uur किए जाएंगे, वेस्टखार्ड क्रिमाटोरियम, ओक मेरवेग 275, अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 45 57 03 25 06 45 57 03 25। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो इन परिवारों के दुख में शामिल है।

वो जो मेरा था मुझे ही क्यों मिलता ही नहीं। फिल्म का नाम है जबरिया जोरिया, दिजार 2019 और आवाज मिस्टर अरिजीत सिंह ऑन द वोकल्स। Ja, het was de eerste film waarin je Siddharth Malhotra samen met Pariniti Chopra samen weer op het scherm kon zien na de film Hasi Top Hasi. Ja, na lange tijd zag je ze weer samen in de film Jabariya Jori. Ja, uit het jaar 2019. Hoor je, ik single song release Ghana. Ik beautiful Ghana, de stem van niemand minder dan Lisa Mishra on the vocals.

ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे पसंद। यह दिसम फन कुमार सानू समेत अलका याग्निक।

मेरी दोस्त ही पसंद आए, खूबसूरत गाना है द फिल्म सपने साजन के, uit het jaar 1992 was dat. खूबसूरत गाना आपके लिए पेश है, हेलक गाना ऑन दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी धमाका रेडियो स्टेशन, नाम है उजाला रेडियो. आई होप यू एंजॉय द गाना. Ik hoop dat je geniet van de heerlijke songs, speciaal voor jou geselecteerd. Isbaar film Aisha Seh uit het jaar 2010, Gal Mithi Mithi Bol.

मोहब्बत हो गई थी दोनों को, एक अरसा हो गया, मेरा ये इश्क था दो तरफा, अब एक तरफा हो गया। क्या गाना, खूबसूरत गाना, द स्टेम फॉर निमन मेरे दान दर्शन रावल ऑन द फोकल्स, खूबसूरत गाना, और गाना का नाम रहा एक तरफा। यू हर्ड हिम हियर बाय उज्जला रेडियो, इट इज मेरा और आपके साथ बाय द वन एंड ओनली दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी सुपर रेडियो, और नाम है उज्जला, उज्जला रेडियो, और वो भी अमित जयराम के साथ। खूबसूरत गाना, मोई मोई गाना पेश है स्पेशल आप सभी के लिए, फिल्म रेस, रेस डेल टू वे, द स्टेम फॉर अतीफ असलम, समय में सुनिधि चौहान, और गाना का नाम है बे इंतहाम।

कतरा कतरा जिएंगे कतरा कतरा हिल्क गाना ऑन द वन एंड ओनली उजाला रेडियो. ये है उजाला रेडियो, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट सेंसेशनल, दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी हिट रेडियो. मैं हूं आमी जयराम. इट इज मेरा और आपका साथ. इट बिटेकेंट लेकर गनीते गब्लासे हिल्क गाना बजाना, फील गुड गाना, लव गाना, न्यू बॉलीवुड सॉन्ग्स. इक हैव इट ऑलमोल बाय मी होर. Ik hoop alleen dat jij geniet. En als jij geniet, dan genieten we samen.

वेलकम प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए या तो कहिए प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप सुन रहे हैं जो

और मैं ढूंढो तो छुप जा, लता जी के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में आप सुने फिल्म जीने की राह, फिल्म जीने की राह का गीत। और लता जी के साथ अब मुकेश जी को आप सुनिए।

जिस्म मगर एक जान है हम, ओ मेरे सनम। आप सुने संगम, हाँ फिल्म संगम से, ये उजाला रेडियो है। Daar kan nummer tijdens kantooruren 020-4090807. Aur agar koi nahi mila to e-mail bhejiye info@ujala.nl.

हाँ मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुम ही से करता है। फिल्म साजन के गीत आप सुने कुमार सानू एंड अलका जी से।

हंसनी मेरे हंसनी कहाँ उड़ चली जहरीला इंसान, जहरीला इंसान फिल्म का नाम और किशोर कुमार गायक। आज हमारा प्रोग्राम में उजाला रेडियो पर आप सुने हैं।

अब चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। आशा जी के साथ मोहम्मद रफी साहब को आप सुने फिल्म यादों की बारात से।

और बहुत अच्छी बात इस गीत में हमें लगा कि तूने काजल लगाया और देखो दिन में रात हो गई, इतने जल्दी इतना आसान दिन को रात में बदल देती है काजल, बस का

किशोर कुमार से आप सुने फिल्म महान का गीत कि जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है, अब तो आंखें बंद करके चले के परी।

इरावादा, मोहम्मद रफी एंड सुषमा श्रेष्ठा की आवाजों में। फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं। ये लुस्तना रुझाला रेडियो ओम दत्यायत फुर्सेल होर्ट या जोख।

0: हम लोगों का तार का नंबर 020-409-0807। Wil jij een reactie achterlaten? I-program per? Stuur dan een mailtje naar info@apenstaartujala.nl. Ter attentie van Vijay.
1: यहाँ भी आ पहुँचे?
2: आया हूँ, अभी पहुँचा नहीं।
1: पहुँचे हुए मालूम होते हो।
2: आपकी दुआ है।
1: काम करते हो यहाँ?
2: कहिए क्या सेवा करूँ?
1: हार चाहिए, चाहिए।
2: ऐसा हार पेश करता हूँ कि आपके गले से लग कर हार नहीं जीत लगे। ये देखिए, इस मखमल से गोरे गले में सच्ची मोतियों का सफेद मोती, ऐसा लगता है कि जैसे चांदनी से धुले हुए आसमान में आकाश गंगा लहरा रही है। 10,000 शायद दाम आपके लिए कुछ ज्यादा है।
1: बहुत कम, कोई महंगी सी चीज दिखाइए।
2: जरूर, ये कैसा लगता है आपको? मालूम होता है दूध की झील है, उस पर सोने के पत्तों में लाल कमल खिले हैं। 25,000
1: बस, इतनी हल्की नहीं, कोई भारी सी चीज पेश कीजिए।
2: और ये देखिए, झील मिलाती हुई किरने सिमट कर आपके गले से लिपट देंगे। ये हीरे आपकी आंखों से बाजी लेना चाहते थे, मगर लगता है लजा गए बेचारे। और ठीक भी है, कहा है ना, लाज ही औरत का जेवर है। 1,00,000
1: बात हुई ना कुछ, हीरो से बढ़कर तो आप से बढ़कर है।
2: अब मेरी जबान से बढ़कर आप है।

आप सुन रहे हैं कि इस गीत में कहीं कहीं यहाँ वहाँ थोड़ी गजल मसल है, पर स्लिपी सी रंदार, तो इसलिए हम गीत को निकाल देते हैं, एक और गीत को रख देते हैं। फिल्म ब्लैकमेल, किशोर जी।

0: बस बस बस बस बस बस बस पूछा है मैंने इनका पता।
1: अरे
0: तेरी आंखों के सितारों से, रुखसारों से, बीमारों से, बेकारों से, लोहारों से, आवारों से, गमकारों से, बंजारों से, लकड़हारों से, लकड़हारों से, लकड़हारों से।

0: live vanuit de Hoofdstad. Uzana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture. Family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. In Gia Event Center. Hey you!

राम करे कि ऐसा हो जाए कि मैं जागूं तू सो जाए, मेरी निंदिया तोहें लग जाए। मुकेश जी की आवाज़ और फिल्म मिलन का गीत अभी आप सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम में। अब हाँ, सुन गाना।

बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। और गीत आप सुने तलत महमूद साहब की आवाज में, फिल्म कैप्टन की शोर का गीत, उजाला रेडियो पर।

0: विश मी गुड लक,
1: राम भले करे,
0: थैंक यू वेरी मच,
1: तेरी भी झूले भरे।
0: कभी हमारे घर भी आना, साथ में अपने उनको लाना, अपने बच्चों को भी लाना, चाय वाये पी कर जाना। सोडा है, लेमन है, दाल है, चूड़ा है, पूरी है, भाजी है।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कह

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोड़ मोल नहीं होती। और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।